0: ओम आओं बाजरा गुरु प्रेमाथ देवजल बाजरा समाया जास दे भाला हूँ
1: एउटा घर संग हजुर एउटा घर नंग हे माया एउटा घर टेकरमा घुम महीना घुम हजुर।